0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, ये तेरे सिदक का फल है जेड़ा अज मैनू नवा जीवन मिले। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता। रजनी, मेरा रोग तो उतर गया। रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन है? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी हूं मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, कितने ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबील वाले बाबा जी तो पानी पियाया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग कि ठीक होया?
0: यह सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जाने तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे। तो मैं रिड़दा रिड़दा यह छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नूं फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म धोते पए सन।
1: तुसी टाणी नूं फड़ के पानी च गए सी ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, तां फिर तुसी ऐस हाथ नूं भी पानी च पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जल दा चमत्कार वेखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता के दरबार में क्या सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उसके मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण उहदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया की उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया की परवाह ना करती हुई उसके मगर लग पई हाँ। हुण मैनू वो दाता मिल पे, मैनू किसी की परवाह नहीं। भगत जी कहते ने

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार कहा। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उसनू होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन अंतरयामी भगवान कृष्ण। दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाइसा फरमान करदे हन

मित्र नूं मिलन आया है। ते महानता यह है भाई साहब फरमान करते हैं भगवान कृष्ण दी कि जिथे सुदामे ने अपनी गरीबी नूं दूर करन वास्ते कुछ मंगया नहीं, उत्थे भगवान कृष्ण ने सुदामे दी गरीबी नूं उहदे सामने जतलाया भी है। नहीं ते अमीर मित्र कहिंदा है गरीब नूं, बई तैनू कोई जरूरत है

गुरु का दसिया होया नाम याद आउंदा है। ते गुरु का नाम याद आउन नाल जदों नाम दसम द्वार दे विच टिक जांदा है, एकागर चित मन

अब हूं ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे, शुभ कमां तों पिछे ना हटी, जुलम नूं देख के कदम पछां ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीयां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुलमी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंघ पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुलमी राजा सिंघां ते कहर टांदा है, मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई। मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही उनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं ते असी उनू छड़ देवांगे, केड़ा है ओ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वाल तक, मेरे चेहरे वाल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा, कौन कहंदा है। ओ सामने तेरी अम्मा खलोती है, वो कहती है नहीं नहीं ओ मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख नूं, ओ मेरी मां नहीं, हो सकता है उदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर ओ सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मामां इंज सिदकों डोलदियां नहीं हुंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक वारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ए तेनू छड़ देंगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका, अजे बहुते दिन नहीं होए किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नूं सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दियां मामां कदों सिदकों डोलदियां ने, ओ ते आखदियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नूं तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जिहियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तर दे जकारे निकल रहे ने।

आप कबूलोगे कि अगूं वास्ते अरदास करोगे महाराज बख्शिश करो, ऐसे तरह आप संगतां दी ये सेवा करदे रहन, शब्द गुरबाणी दियां कैसटां इतिहास दियां कैसटां घर घर विच पहुंचांदे रहन।

अमृत, अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखा नु पियाया ते खालसा पंथ साजिया। पर इस अमृत दी कहानी बड़ी लम्मी, चार युग होए ने, सात युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा टंग वखरा, अमृत लभण दा टंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलियां युगां विच, अमर होने वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता अपने भले वास्ते। पर जेड़ा अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखा नु पियाया, ओ अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमां दी रखिया करन वास्ते। तो आओ विचार करिए, पहला सतयुग बारे के सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरमत अनुसार।

एक किस्सा तरती तेन से पानी मन्या गया समुंदर बड़ा वड़ा एक वरी देवतिया ने विचार कीती देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी सलाह कीती सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी च

लावते कुछ नहीं। श्री रामचंद्र दे छड़े होए कोड़े नु फड़ लिया। पिछे सेना सी, सेनापति ने क्या बचियो कोड़ा छड़ दियो। पर दोनों भरा कहन लगे छतरी हां इस तरह दे कोड़ा छड़ दे नहीं, जे हिम्मत है ते छड़ा लो। लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई विच दोनों भरावां ने सेना दा बुरी तरह नाश कीता। इथों तक हनुमान नूं भी दरख्त दे नाल बन दिता। लक्ष्मण वर्गे योधे भी दोनों भरावां ते काबू ना पा सके। आखिर श्री रामचंद्र नूं आप लड़न वास्ते आना पिया। इस लड़ाई दे विच श्री रामचंद्र मुर्शिद हो गए। ता उस वक्त सीता जी नूं पता लगा। उन्हें आके क्या बच्चियो एहो ही तुहाडे पिता श्री रामचंद्र हन। उदों पता लगा कि श्री रामचंद्र एहो ही ने जिहड़े साडे पिता ने। ता लिखिया है उस वक्त अमृत दा कड़ा फिर दोबारा मंगाया गया। उस अमृत दे नाल श्री रामचंद्र अते बाकियां नूं सुरत विच लियांदा। जिहड़ा अमृत बचिया जगह पुट के उस नूं दब दिता गया। त्रेते विच ए अमृत इस तरह प्राप्त कीता। ते लिखिया है कि जिस जगह ए अमृत दा कड़ा दबिया गया कलयुग दे विच ए जगह प्रगट हुई। इस जगह धन गुरु नानक साहब ने भी आके चरण पाए और इस जगह नूं अजकल दरबार साहब श्री अमृतसर करके भी याद किया जाता है।

द्वापर युग बीत गया, कलयुग आया, धन गुरु नानक साहब का अवतार होया। आओ हुण गुरमत अनुसार अमृत बारे विचार कर दी, क्योंकि हर पक्ष देख के फिर चलना चाहिए ता आनंद और समझ पूरी आंदी। धन गुरु नानक साहब का अवतार होया सुल्तानपुर लोधी। धन गुरु नानक साहब जी ने जदों रहना शुरू किया रोज अमृत वेले नदी ते इशनान करन जांदे ने, अज भी इशनान करन गए। सेवक खलोता है, देख रहे है, अचानक इशनान करदे हैं। धन गुरु नानक साहब ने पानी दे विच ऐसी झुब्बी लाई कि दोबारा उत्ते नहीं आए। सारे सुल्तानपुर लोधी खबर फैल गई कि गुरु नानक डुब गए, पर गुरु नानक साहब दे वड्डे भैण जी बेबे नानकी वो कहन लगे मेरा वीर डुब्या नहीं, क्योंकि मेरा वीर ते डुबदिया नूं तारण वास्ते आया। दूसरे पासे धन गुरु नानक साहब चुभी मारी पानी विच पहुंच गए सचखंड। अकाल पुरख दे सामने खलो के हाथ जोड़े ते नाले ए शब्द उचारे।

एक गुफा च बह जा। करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना, इन्ना तेरा नाम जपा पर अकाल।

कलयुग विच सब तो पहला अकाल पुरख ने सचखंड बुला के आप नाम दा अमृत दा प्याला पियाया। धन गुरु नानक साहब अपनी बाणी

सुत कहते ने पुत्र धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख न कहते ने अकाल पुरख तुसा कहा मैं अपना सुत दोहे निवाजा पंथ प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहले जन्म का नाम दुष्ट दमन सी। ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलाने वास्ते। ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नू दया कहो जिया मैं पंथ चलाव। मैं अपना सुत तो ही निवाजा पंथ प्रचुर कर बे को साजा। अकाल पुरख दे चरणा विच बेनती की थी गुरु साहबां दी अखां बंद ने अखां दे सामने एक सूरत आई लत्तां पतलियां पर भार सहण वालियां चौड़ी छाती मत्था चमकदा अखां विच नाम दी लाली बोल फरकदे ने सोहना दाड़ा सिर ते दस्तार हाथ कड़ा गात्रे कृपान तेड़ कछहरा सोहनी सूरत देखी तो गुरु साहब जी पुछदे ने ऐ सूरत तू कौन है। उस सूरत बोली मैं खालसा। गुरु साहब जी पुछदे ने तू कित्थों आई है। उस सूरत बोली मैं तुहाडे हिरदे विचों आई हाँ मैनू हुण तुसी बाहर प्रगट करो जो चाहिदा सी ओ मिल गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वापस आनंदपुर साहब आ गए पर सोचन लगे ये सूरत बड़ी सोहनी पर किन्नू दया मसंदा पंडित साधुआ सन्यासिया किन्नू दया ये सूरत क्योंकि जे आप दुध लैन जाना होवे ते भांडे नू चंगी तरह साफ करके ले जाने हैं जे दुध वास्ते भांडा साफ चाहिदा है ते अमृत वास्ते भी तां मन दा भांडा सोहना ते साफ चाहिदा है।

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है। एक पासे माइया बैठिया ने, एक पासे पुरुष बैठे ने। सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होए है, कीर्तन हो रहे है। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतियां सन, अखां खोलियां, एक पहरेदार सिख नूं कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहे है, जाओ उसनू प्यार नाल साडे कोल लै आ। पहरेदार चला गया। दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा रो रहे है, अखां बंद नहीं, हाथ जोड़े हुए नहीं, पर बंद अखां विचों अथरू पै गिरदे ने, ते नाले कह रहे है, ऐ सच्चे पातशाह मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबुल तो आया, तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनू हुक्म नहीं। पहरेदार सिख पहला तो सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया, ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनू ते आप कलगियां वाले ने याद कीता। उससे कुठिया अखां पूंजदा होया पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदों दरबार विच दाखल होण लगा, इत्थे भी इक पहरेदार खलोता सी, उसने कहा, ये काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकता। नाल आया पहरेदार कहन लगा, ये दरबार क्यों नहीं जा सकता? तां खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड्डा मसंद है चेतो, उहदा हुक्म है इस काबल वाले सिख नूं दरबार विच नहीं जान देना। ते सुन के नाल आया पहरेदार कहन लगा, जेड़ा चेतो मसंद दा मालिक है कलगियां वाला, मैनूं उहदा हुक्म होया। ये सुन के पहला पहरेदार परां हट गया, सिख दे हाथ जुड़े ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने पहुंचे, दर्शन कीते, अखां विचों अथरू वगन लग पए। तीन दिन हो गए सन रोंदे हां, अरदासां करदे हां, गुरु दे दर्शन कीते, अपना सिर चरना ते रख दिता, ते कलगीधर पातशाह सिर ते प्यार नाल हाथ फेरदे ने, ते नाले बड़े प्यार दे नाल कहन लगे, सिखा काबुल तू आया, तीन दिन हो गए ने तैनू रोंदे हां, सानू पता है, सिखा साडे नाल बड़ा प्यार करना है, पर साडे वास्ते बेटा की लैके आए। साध संगत, गुरु किसी चीज का भुखा नहीं, गुरु ने बेटा क्यों मंगी, ए ते गुरु का कौतुक है। कहन लगे, सिखा साडे वास्ते बेटा की लियांदी। सिख हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह मैं की देन जूगा, सब कुछ आपदा है, मैं सुनियारा वा, हाथियां दे दंद दा एक कंगन जिहदे विच हीरे जड़े होए सन, मैं आपदे वड्डे मसंद चेतो नूं उदों दिता सी जदों काबल गया सी, दूसरा कंगन जिहदे विच हीरे जड़े ने मैं लैके आया सां, ओ कंगन मैं चेतो मसंद नूं दे दिता,
ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਐ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਗਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਨ ਤੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਸੰਗਤ ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

कुछ लोग कहते ने कि सिख धर्म वक्खवादी है, पर सिख धर्म वक्खवादी नहीं। यह सिख धर्म का ही उपदेश है। धर्म के नाते लड़न वाले हो, सुनो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तुहानू की उपदेश करते ने। ना मंदिर

राक्षस, जश, गंधर्व, तुरक, हिंदू नाम वक् हैं, पहरावे भी वक् है, देश भी वक् है, और इन चीजों का असर इंसान से होता है। पर सतगुरु जी कहते हैं अगर आप मन विच विचार करिए तो सानू किसी विच फर्क नजर नहीं आवे।

ब्रह्म सूदवैश, और हिंदू और मुसलमान दो वटिया कौमा, और दोनों का ही झगड़ा सदिया तो चलिया आ रहा है। पर गुरु नानक दे घर का उपदेश की है कि जेड़े लोग रब दे नां ते लड़दे हन ओ पुल्ले और पटके हुए लोग हन। भाई साहब जी बयान करदे, चार वारन चार मजहबां,

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते, मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने, अगे भाई साहब की कहते हैं।

और कतेबा नु भुला दिता। वेद की पूजा हिंदू करता है, कतेब नु मुसलमान पूजता है। भाई साहब जी कह रहे ने वेदा और कतेबा का उपदेश भुला दिता है और दुनिया जिहड़ी है देखो लालच विच फस के शैताना दे राह ते चल पई है। शैताना दा राह नफरत ईरखा दुबदा और झगड़े।

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मौलाने आपस च पे लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे

अल्लाह दे राम दे नाम नु समझिया नहीं झगड़े पाले और जेड़ा ये जन्म मिले है झगड़िया में चुकवा लिया और आवा गाउण दा चक्कर जेड़ा है ये उस तरह ही

इस पौड़ी दे विच भाई गुरुदास जी ने इस्लाम धर्म दा जो असूल है उहदे बारे दस्या कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा इह उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते तां औरंगजेब जिहड़ा कि इक जालम बादशाह सी उसने यह हुक्म किया सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म नहीं रहन देना। तां पंडित कृपा राम ने आनंदपुर साहब आके गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार पुकार कीती, साडे हिंदू धर्म की रक्षा करो। ता गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म की रक्षा कीती। और गुरु नानक साहब दे अवतार तो पहला भी ठाकुर द्वारे ढाए जाते रहे भाई गुरु

जिड़े जालम कोल शक्ति आ जाए ओ फिर गरीबां ते जुलम करदे हन। मारन गऊ गरीब नूं धरती उपर पाप बिथारा और धरती ते इतने पाप हो गए, इतने पाप कि सच लभदा नहीं सी। राजे जुलमी हो गए, वजीर पाप कमाण लग पए, अपने भले वास्ते अपने फायदे वास्ते लोकां नूं लड़ाना, लोकां दा नाश कराना और आप खुश होना। भाई साहब जी कह रहे ने

ते फिर कहना कि मैं धर्मी हो गया। नहीं, भाई साहब जी कह रहे ने कि देखो ये नाराजियां महाराजियां दा वजीरां दा की काम बन गया, अपने फायदे वास्ते ये धर्म तो दूर हो गए और लोकां दा नाश करन लग पे।

जाओ निवाजू जी। ए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे रब दा घर हन, इन्हां दा अपमान करना ठीक नहीं, क्योंकि एक पासे आपां कहने आ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ए रब दा वाहेगुरु दा राम दा घर है, भगवान दा घर है, पर इंसान अज दा कहो जिहा हो गया है। एक पासे कहंदा है ओ रब दा घर है, जद झगड़े आपस दे हो ते फिर इंसान जिहड़ा है ओ इस पासे तुर पैंदा है कि धार्मिक स्थान भी साड़न तों ओ गुरेज नहीं करदा। जिहड़े लोग धार्मिक स्थानां दा अपमान करदे हन कि ओ अपने धर्म दे नाल इंसाफ करदे हन कि ओ जिस रब दे नाल प्यार करदे हन अपने मन कोलो पुछन कि मेरे इस काम ते मेरा रब मेरा परमेश्वर खुश हो रहे हैं। अपने मन दे नाल विचार करो ते इसका जवाब खुद मिल

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी नु दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे।

और दूसरे पास से ब्राह्मण ने उपदेश किया, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे, जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे असी ते ओनू ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिद भी जिस पासे भी देखेगा वह जिधर भी देखेगा ओनू ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है हर पासे परमेश्वर है ते फिर किहदे नाल झगड़ा ते किहदे नाल लड़ाई, किहदे झगड़े खत्म हो जाणगे। और गुरु घर दा उपदेश है फिर ते इंसान इहो ही कहेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किहदे नाल लड़ा सारे ते

ए पुली हुई दुनिया रब नू समझ नहीं सकी क्योंकि रब दा नाम ओ लड़ांदा थोड़ी है ओ ते इंसान नू।

गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश होया है। उस वेले का जिक्र है, एक मुसलमान फकीर पेखन शाह पटना साहब दर्शन वास्ते आया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज छोटी उम्र है, पेखन शाह पटना साहब जद पहुंचे है, उसने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए छोटी उम्र विच। पर मन विच एक सोच पूरी कि ए रबी नूर हिंदू मुसलमान विचों किस दा पक्क पूर्द है। इस मंतव लई उन्होंने दो मठियाई दियां कुजियां ते दो कुजियां विच एक विच दुध एक विच पानी लिया। मठियाई दियां कुजियां तो भाव उन्हां दा धर्म सी ते पानी वाले कुजे दा अर्थ उन्हां मुसलमान भरिया सी ते दुध वाले नूं हिंदू मिथिया सी। मुसलमान बंदश ते शरां नूं ही धर्म समझदा है अते पानी बंदश विच पै के ही काम सवारदा है। हिंदू चिट्टे कर्मां ते जोर देंदा है अते चिट्टियाई दा चिन्ह दुध ही है। पटना पुज के उन्होंने पहला दोवें मठियाई दियां कुजियां बालक गुरु अगे रखियां। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने दोवें छोटे छोटे कोमल हाथ दोनों कुजियां ते रख दिते। फिर जद पेखन शाह ने पानी ते दुध दे भरे हुए कुजे अगे कीते तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने छोटे छोटे चरणा दे नाल दोवें ही कुजे डोल दिते। सारे हैरान हो गए, पर पेखन शाह ने अगे वध के गुरु साहिबां दे चरण चुम ले। और पेखन शाह ने फिर यह सारा भेद लोगों सामने खोलिया कि यह गुरु किस एक दा नहीं, यह धर्म तां कुजियां विचों कढ़न आया है। धर्म दी यह बदकिस्मती है कि उसनों किसे ने मसीत ते मंदर तो बाहर नहीं कढ़िया। इस कलगी वाले ने हिंदू धर्म मुसलमान धर्म नालों सिर्फ धर्म ते चलन दी प्रेरणा दित्ती। सारी जिंदगी ही उन्हां दी मुहारनी यही रही, वो पहले विश्व आगू सन जिन्हां मंदिर ते मसीत पूजा ते निवाज नूं इक करके जानन दा उपदेश दिता। अकाल उस्तत विच ही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा एक प्रसिद्ध सवैया है जिहड़ा आप जी सरवण कर रहे हो। देहो राम मसीत सोई पूजा हो निवाज हो ही। ए ठीक है कि सिख धर्म विच मूर्ति पूजा नहीं कीती जांदी और ना ही निवाज पढ़ी जांदी है, पर फिर भी देखो आम होंदा है दो लड़दे होन ते तीसरा बंदा तमाशा देखदा है। पर ए गुरु नानक दा कार उपदेश देंदा है कि भाई क्यों रब दे नां ते लड़दे हो, ठंडे जिगरे दे नाल ठंडे मन दे नाल विचार करो कि फर्क की है। एक ने पूजा करनी है, एक ने निवाज पढ़नी है, एक ने वाहिगुरु कहना है, ते फिर फर्क की है। ना वक्रे हन राह एक है, मंजिल एक है, फिर झगड़ा क्यों।

गुरु साहबान ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसे फिरके दे खिलाफ नहीं, वो जुलम दे खिलाफ लड़ाई सी। ते जुलम करन वाले दा कोई धर्म नहीं होंदा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुलमिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज विच हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि ये इंसानियत के भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करन वाला और एक जुल्म नूं रोकण वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनूं फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म की रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुल्म दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उन्हां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई आपां भी महापुरशां दे राह ते चलीए, और ये जिहड़ा उपदेश है इस नूं अपने दिल विच थां लईए, उपदेश ते चलण दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म दी किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं मन लवेगा

मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा जो पिंड सतिसा सब कुछ है तेरा माणा में माणे तू तने तेरा परवासा बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

तो तुम ते लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता।

तेरा खेल अखाड़ा जियो। तुर बिन दूजा और न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। क्या कहिए किस आस सुनाइए, जो कहना तो प्रभु जी पास। सब कुछ किता तेरा वरते, सदा सदा तेरी आस। जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई।

अपनी कृपा करें। क्या कमल मन खड़ा दे किस दिन आम की पर परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी।

तू मेरे काम लग जा, मैं तेरे काम लग जाना। मैनू तू अपना काम दे दे ते मेरा काम तू ले। संसार च ऐसा चल जाता, एक दूसरे दे काम आना, जिस काम दी जिदी जिन्नी समर्था होवे। बड़े पुराने समयां तो बंदा काम दा लैण देण करदा रहे। जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता, जेड़ा कर सकता ओनू जाके बेनती करा तू ये कर दे, इहदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस। एक दूजे दे काम आ सकी। संसार च भी ऐसा वरते है, पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा कीता है कि

महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउन दी एक दूजे दा काम करन दी सांझ पाउणी है तू वाहगुरू नाल पा के वे मालिक तू जो चाहे कर सकना है तेरी समर्था महान है करता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता मैथों कुछ भी नहीं हो सकता जब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा अरदास हो सकती है और सच्ची गल जानना अरदास खड़े हो जाना ही रब का काम है ओदे काम लगन का मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे विच और जिस वेले साडे हथ जुड़ जाण मस्तक न्यो जाए इहदे दो अर्थ हुंदे ने हथ जुड़ जाण का मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना इन्हां हथां ने कुछ नहीं कर सकना इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं यह हथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने इन्हां हथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन आप करता पुरख हो इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना यह हथ बज गए यह हथ तेरे सामने जुड़ गए इन्हां तो कुछ नहीं होना एक तो दोवें हथ बन के सत्कार हुंदा है ना किसी दूसरे का अभिवादन करना हो आदर करना हो भी हथ बनने लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हथ बनने का मतलब यह भी होंगे है कि इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना बल्कि जिसले मत्था टेक देने ये पिछे भी दो गोज भाव ने एक तो यह होंगे है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैन आया लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने मत्था टेकने पातशाह इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं इस दिमाग तो सोचा भी कुछ नहीं जा मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता मेरे सोचने च बड़िया भुलां ने मेरी थां सोचो भी तुसी मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो मैं तुहाडी अरदास जुड़िया हुआ अरदास अर्ज दाश्त बेनती कर रहा हूं अर्ज कर रहा हूं मैं केवल अरदास जुड़िया हुआ एक ते जुड़ जाए ना बंदा साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराया बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है ये वखरी गल है मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है जुड़ना ही औखा है अरदास जुड़ जाना ही औखा है नहीं जुड़े रहा तो ये वास्ते भी अरदास करिए बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए तू मैनू अपनी अरदास जोड़ लै अपनी भगती नाल मेरे लिए भी एकाग्र करन दी समर्था मैनू बख्श फिर मैं अरदास च लगा होवांगा हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा भगती च लगा होवांगा प्रभु का होर कोई काम साथों थोड़िया नहीं गया वाहिगुरु का कोई काम साडे गोचरा नहीं प्रभु केवल प्यार चाहुंदा है साडे कोल सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा है ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए अरदास करनी आ जावे ना फिर की हुंदा है जो जन तुमरी भगत करन ते तिन के काज सवारता एक तां हुंदा ना काम हो जाना काम कर लेना काम नबेड़ लेना ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना पहला तां करन तों पहला ही थड़कदा हुंदा है घबराया हुंदा है डगमगाउंदा है ते जे किते काम हो जाए हंभ के बह जांदा है पसीने पूंजदा है सजना मित्रां नूं कहिंदा है शुकर करना काम निबड़ गया बंदा केवल नबेड़ सकदा है लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं सतगुरु कारज सवारदा है वड्डी वड्याई अचरज सोभा उस कार्य शोभा होंगी माण हों सत्कार हों उस कार्य की वड्डी वड्याई होंगी कार्य आया रासे नानक कौ गुरपुरा भेटियो सगले दुख बिनासे जो सतगुरु कार्य करना आ जाए उस वे कार्यां च शोभा होंगी अरदास करने वाले का मुख उजला होंगे ये गल वखरी है कि अरदास करने वाला बंदा कार्य की संपूर्णता तो बाद यह नहीं कहता मैं कम नबेड़ दे बल्कि

गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्होंने 12 साल सेवा की थी। 72 साल दी उम्र विच बाबा अमरदास जी जदों गुरु अंगद देव पातशाह दे कोल आए ते जदों दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना होंदे ना ओ उथे एक नजर ते ही मन जांदे, पहली नजर ते ही मन जांदे। जदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मैनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच लग गए। रोज गागर दी सेवा करनी, खंडूर साहब तो गागर लैनी, 5 मील तुरदे हुए ब्यासा नदी।

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल दा आखरी दिन है, आज एडा चखड़ चल

क्योंकि मन विच श्रद्धा सी कि ए जल मैं गुरु वास्ते लैके जा रहे ते सच्चे पातशाह दे इस जल दे नाल इशनान कर। जदों जल दी गागर ना टिकन दिती खड़ाक होया अंदरों जुलाहे ने पूछया

चुक चुक जा रहे हैं। सात सगित बोलो श्री, क्योंकि जितना फल लगता है टैणी नू, ओ टैणी उतनी चुकदी चली जाती है। एडी सेवा करके 12 साल सेवा की गुरु अमरदास जी ने, ते फिर की होए गुरु नानक दा रूप बन गए। सत्संग

सब तो वड्डा अवगुण की है कि मैं अमृत नूं छड़ के बिख खाई जा रहा। हे परमात्मा, जो तू अमृत की दात दिती मैं वह भी हासिल नहीं की, केवल बिख चखी जा रहा। एदू वड्डा होर अवगुण केड़ा हो सकता है। फिर कहिंदे ने माया मोह परम पै भुले, माया दे मोह विच पै के परमा विच मैं भुलिया फिरदा हां। माया मोह परम पै भुले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। सुत कहिंदे ने पुत्र, दारा कहिंदे ने इस्त्री। हे मेरे मालक, मैं तेरे नालों प्रीत तोड़ के, तेरे नालों प्यार छड़ के, मैं अपना प्यार अपने पुत्र तियां नाल ते घरवालियां नाल लाया होए। फिर कहिंदे ने

कंचन नारी में जियो लोबत है वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इन्हां विषय विकारां विच पै के मोह दे जंजाल विच फस के माया दे मिठे रस चख के हे परमात्मा सी तेनू पलाया होया।

सब अवगुण में गुण नहीं कोई। जेड़े गुण परमात्मा नू चंगे लगदे ने ओ ते तेरे विच है नहीं। फिर कहने क्यों कर कंत मिलावा हो, तेरा कंत नाल मिलाप किवें हो, तू परमात्मा नू किवें मिल सकता है, क्योंकि जेड़े गुण परमात्मा नू चाहिदे ने उन्हां विचो कोई भी गुण तेरे विच नहीं है। सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई।

हे माधव, माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे, सत्संग तो ध्यान देना। हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो दे आ, सतगुर कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

करेंगे। हम पापी तुम पाप खंडन। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करने वाले हैं, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले हैं। किवें चंगे हो गए? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना। निको ठाकर दे सामने नाल चंगा तू जिहड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जांदा। हम ऐसे तू ऐसा आओगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे किते मन च वस जाए जीवन बदल जांदा है, जीवन पलट जांदा है। हुण सतगुरु ख्याल देंदे हुए कह रहे ने

मैं अवगुण हारा ते आप उपकारी हो, मैं अवगुण करी जाना आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

0: मेरा।
1: हे रमैया मैं तेरा बालक हां, काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल ए कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने। इसलिए भाई आओ आप उस मालिक अगे इस तरह बेनती करिए, गोबिंद हम ऐसे अपराधी, गोबिंद हम ऐसे

एक खिन लेना हर को नाम गोविंद, हम ऐसे अपराधी। कैसा अपराध है, रात पैंदी है सौ जाने है, दिन चढ़ दिया उठ के कमा कारा नु तुर पैने है, ते परमात्मा दा नाम कदो जपांगे। रात जो सोवे दिन करे काम, एक खिन लेना हर को नाम, एक खिन मात्र भी तू परमात्मा दा नाम नहीं जपदा, तेरे अंदर गुण केड़ा होया।

नाम तो बिना भाई तेरा क्यों छुटकारा हो सकता है। ते नाम मिलता कितों है आख्या जपन वालिया की संगत में तेन नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालिया की संगत में नाम तेरा आधार हो जाएगा। साच नाम आधार जिन्हों नाम का आधार हो गया फिर उदिया सारिया ही भुखा दूर हो जांदिया हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इस हजूर बख्शिश करते हैं कि यह गुरु की शरण विचों मिल सकता है। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहंदिया ने घड़े न आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकता आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जाता है जाया हो जाता है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसी तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उसके मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण उहदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाए। मैं दुनिया की उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया की परवाह ना कर दी हुई उसके मगर लग पई हाँ। हुण मैनू वो दाता मिल पिया। मैनू किसी की परवाह नहीं। भगत जी कहते ने